निकल के नंदुलर रेडियो सारंग नॉट 7.8 एफएम इंचिपा कुदमुल रंगराव पुरभवना मुल्पा तुलु कोटा रजिस्टर कुडला उन्देता बंगार पर्पदा लेसिड आई लेसा द वॉइस ऑफ ओशन बेंगलुरु मोकुलु नडपाद कोरना पदरंगिता कार्यक्रम दा सुरुते गेने के नंदुबरका

0: एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी न इत्तेहाक चलिए।
1: खुले आम आँचल न लहराक चलिए,
0: हुजूर इस कदर भी न इत्तेहाक चलिए। खुले आम आँचल न लहराक चलिए, हुजूर इस कदर भी न इत्तेहाक चलिए।